उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भजलो रे हरि तन से भजलो रे हरि राम नाम है जग में।

भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुंह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ लूची, नाटक शुरू होने ही जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री जंकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
7: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ। मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
7: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज को

0: लगी है, शाही पकवान लाओ।
1: ये लीजिए महाराज।
0: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ, शाही रसोइये।
1: जी महाराज।
0: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
1: जी महाराज।
0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
2: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
3: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
0: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
0: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
3: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली

0: पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
1: तैयार।
0: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
1: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
0: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
1: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
0: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
1: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
0: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम?
1: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी, मैं बताऊँ?
0: अरे गुगी, अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
1: चमकी, अब तो जवाब बताने दो।
0: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब?
1: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
0: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
2: मजा आया ना? अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। है जी, क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
3: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है, बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी, और आप?
4: अब्दुल रहमान।
3: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
4: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
3: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
4: पालक है, टिंडा है, और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
3: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
5: मेरा नाम शांति है।
3: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
5: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
3: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
5: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
3: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्तों कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
6: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
3: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
6: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती है।
3: अरे वाह,

0: नीलकंठ में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
1: पालक।
0: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
1: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
0: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
2: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
0: ये अच्छा तरीका है। मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
3: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच। फ्राई करी लाल हो गए, इनको निकाल के रख देती हूँ। पर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
0: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय
4: बाय। मजा आया ना तो।

0: तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था, यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी हरी सब्जी। मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है। जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं। और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते
1: जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियाँ खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज़्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही हैं, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए
1: जी। आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियाँ देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

से आई घर की हुलिया बदल गई, जितना से आई घर की हुलिया बदल गई, लड़का और बिटियन खा ऐसी अकल गई।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जाना थे कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए। और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो यू के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चले थेगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार,

सुधा समान पर्वत जंगल आलीशान सुबह सुबह और मिलके न धसान जिनको पानी

सब तुलसी भये महान। तो संत कभी दुनियन की खान, तानसेन की गूंजे तान, ये सब तुलसी।

आजी पदवी पाई गोदी खेलत रहे रघुराई प्रेम भाव के भूखे भगवान प्रेम भाव के भूखे भगवान वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखंड प्रेम भाव के भूखे भगवान वीरन।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल वाया करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर।

0: जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है, और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
0: अच्छा,
1: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुहार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है, जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अघनाशे हु तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, निरंतर गति में है और ये तप स्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्ति पीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी भी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
0: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन के या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
0: आप हमसे जुड़े और
1: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
0: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
1: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
0: तो आप उन्हें तई के हो?
2: यही के।
0: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करे थे यहाँ जन्म ले के ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहे चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
0: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
0: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे, मतलब ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र जी, हम देखे हैं, और बहुत बड़ा है मंदिर।
0: अच्छा।
2: हाँ, उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है।
0: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत, धन कुंवर की आवाज।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-14-17-26।

एक सात दो छः। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवते राजन के कुमार और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हती राजा के कुमार,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ।
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काज के, पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह को चले जा गए।
2: दो ही के दो,
1: दो ही के दो शिकार ला भी अपने घोरों मस्के, भी अपने घोरों मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरती तुम्हें फिर करना।
2: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले बोले कर ले बीरन, बोले अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल जा के थे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा,
1: अब भी है बादशाह बीरन और बादशाह दोनों जने कह के राजा हो बस बार मार बनवाए दाढ़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कल कबैया कल ससुराल।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सुतकरा है, फलाने के पक्या थे, नाव को सब पतो है। नाव कुआ तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो। अब बीरन के बार बन गए, अब राजन के बादशाह के बनने। बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले कब बोले कर ले कही राजन के राजा बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम कैसे चले जावे। अरे बोले कर ले राजन के राजा आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं ना।
2: अच्छा,
1: हाँ हाँ, बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए, अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस सब चलिए ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा,
1: गली में से बटी लगी, उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म ढीलो तो चलो बीरन पिया पानी, तो बीरन गौ पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बांचो।
2: अच्छा,
1: बीजक बांचो वामे सू में गली अलग अलग। बीरन हो बदमाश, बीरन बदमाश हो।
2: अच्छा,
1: बीरन ने कहा करो किस्ता के पानी पी के बावरी में वो बीजक को भरा दो।
2: ले उसका
1: अगर

0: माया गाय जब बीजक खोजो राजा पानी पीवी आ रहा तो जब बातें ले संग छूट गो इसे के हम आज जैसे सारे चले
1: चले जी
0: तीनों
1: जन
0: जा तो बीजन बदमाशी के रहवा तो बस अब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में है सुबह में बीजक में गिराव लगो तो राजन ने अपने खोबन की उली सुली
1: धो दाओ
0: और फिर उगे बाचो बाचो बाय सुबह ने प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई वो जा बीजन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो बोले कहले तुम वे बीजन बोले कहिए राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कहले पुरखन को बीजक के ने मिटा दिया है हट कर ले के हम आपके ससुराल जाते हैं बोले कल उनकी शर्तें लग गई
1: अच्छा
0: बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो जो बाउरी पे ठहरे चार दिन के को भी जा
1: सही सही
0: तो बस बेटे तुम भी अपनी ससुराल चले गए अब भी अपनी ससुराल कर ले वो जी ससुराल का नाउ बोले कल जी राजन के संग चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संग का चले हम सेठ आदमी और राजन के संग जी और हेल्पर चलते हैं तो राजन की कुमार और सताई का कद्दू जी जा रहे बीजन अपनी ससारे चले गए अब सब राजन के कुमार जा रहे जो बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास बोले कल सताई कब बोले कल ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर शरीर से प्राण निकल जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कर राजन के जाने बारह कोस में न है पानी न माय पानी अपन वन में हेंगे बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है नाग गा के बोले कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी सुबह देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो एक उत्तर दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जल्दी हो गया उसे बोले कल चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी और चल अरे खुली जाए सुबह जल में दे पाई खुली से जीत गए कि आना फिर बाहर आराम से बिन्नगर चली गए काकिस्ता हाथों के जोनवर लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी
1: अच्छा
0: नदिया में स्नान कर रही थी तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए बोले कहले सुताई अक्का बोले कहले ये राजन के राजा बोले कहले उस तालाब में पानी ये तो ठीक है तुम ले आया बोले कल हाथ जाके ना पूछो पानी पी लो तुम बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया होता ऐसा जल्दी हो थे को कि मचो सचो भर के आ गए बोले कल महाराज कल वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद प्यास में मर जा रहे अरे बोले कल बगरा गया वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुदायक का बोले कल्ले ये राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नागपक्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जावा,
2: राजन ने कही जावा,
1: राजन ने कही जावा। हां तो उन्होंने फिर कही उन्होंने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो।
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा

0: कितने गली बता दो सब के द्वारे में
1: आप पहुँच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते अगर बता दीजिए। अब वह जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल की जाए। इनको बदल शरीर है कैसे, मुंह करे माए खो और पीठ तरह इनता खो कई के। अब जाइए से बताया सुनने के बाद माँ से बोल।

0: अहमदाबाद में जाओ।
1: अच्छा
0: हाँ मिली ना बताई ना बाने बदन काटो जल नीर में रही
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर ले मैं साबुन में थी सो गली तो पूछ ही ली गली पूछ के उनने घूरो बड़ा गाँव के लाने तैयार अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरो और सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ने ये हती से जात है भवन द्वारे छतेगा को देखो तो ससुराल सुबने द्वारे उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुब गई घरवाओं को बंद अब भाभी से बोली भी

0: भाभी ने ऊंचे कंदेला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
1: ऐसे
0: और तुम्हारी आ गए चाला
1: अब लुबग्गा आ गए तुम
0: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही सुबह सुनने घरेलना उतार के अपनी नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी वाला थे
1: सही कह रहे
0: अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो हाँ मैं तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सवती सोने गुंजन की भोजन बनाए भोजन बना के और अज्ञा दे दी भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो और वहां से बने ठना ना जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकने ना तो भेज कैसे खोले
1: बाबा सही है।

0: हमारी सरकार के और वसुता जब काने पर झटपट जो कछु राजनीति से बाप बांधी और बाप नहीं बांधी और वसुता की माजी कहे लग का के करना काहे काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी टाटी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया
1: जैसे टाइम लगे
0: जैसे टाइम लगे बोले कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो ये इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने तो बस दिया कि तो तैयार हो गए जहाँ से कराऊं वो तो उन्हें भज्जा घूरो कस हो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चावन पीटने कस रहा
1: अच्छा
0: वो पले चावन पीटने के तन दिन तो उनके यादव बन
1: यादव हाँ हाँ ये मैं भी दे रहा
0: था ये भी दे रहा था ना क्योंकि कैसे जन सभी लोग हो जाए तो बस जो राजन का हाँ साफ कल भी हो गए तो राजा का कल क्या है जो ऊपर का पले चावन नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे निकल के भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा रेशम डोरा पाट कोरे जने दियो रे चटका।

0: टाटी सरकार के माय कच्ची अब अभी खुलगो के जई है
1: हां सही कह रहे
0: क्या बात
1: जई
0: जब बाबा ने बात खोली सो बोले समझ गए सो उनने माता

0: देखो रिश्तेदारी है वो जा तुम दिन चटकाओ और टूटे से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुन में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ
1: नहीं गए
0: पड़ोसकी
1: ने कही जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो पैर वेर को संग है
1: सही है
0: बेर भर के जाओ
1: तो
0: उनने हटी सो जैसे कच्ची पुटिया पर मुद की वो ही रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोन पुटे पाड़ जा ले गए
0: मैं कहूँ वही जामपुर की रानास हटी फिर पहुँच गए भाई सतखंडा पे पहुँच गए तो अब उनने सोची रानी कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे रहती भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज के सुनकर मूर भूल गई बन गई और वसन दो हाथ दे रही संक

अगर ही खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना नहीं, नहीं कर बाने फिर दो जाकर कहो।

कामनी। अरे खोलो का अरे किवार जी उन खोलो कंत के बार निके उनने नाव से कई के किवार नहीं खोल दी। अब जो दो है सुनो साधु ने साधु ने सुनो दो है साधु के रामन से

0: शंख बजे से साधु जगे, बम घले राजभूत। अगर इतने में के बम घर रहो और नहीं जग रहो तो कुछ का कुछ
1: सही है का है के का हो
0: का हो
1: कते दुनिया भगत जा दे विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा।
1: हां
0: के रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दोहा कह रही है

0: लड़की लड़का से लड़की भली रे सो मेरे पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासों का काम किया थी तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मिड़ी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोल
0: ये तो गड़ गया है ना सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरे में रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सवीरम हो सोने घोरो मस्को चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है जो भाई डट गए खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो उन्हें बिदा उनकी कई वो में खाना पीना सब तो महीना भर के लाने रखा था। खा पिया जे घरे चले गए बस आवा बेहती सो अब पीना हकावे बारे हती सो जैसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्के छोड़ के अब खुद उनमें हकाई अब सुताई अब काले खबार जी ने हकाई सुबह हका के वो बस सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को टोलो रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए बस के में अब बोले कर ले सुनो सुता का बोले कर ले कर ले पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। बस सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सुता अक्का से कही के सुता अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है के पति लगाओ तो सुताई का अक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को क्यों बे ये तीन पात में कहा खोलिया बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमाए रानी की फार के मार फिर गई। अब बस पातस लगती आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के ही हैं इसे का करें जब ये सुबह घोड़े की पछाई की ईड़ रखी ईड़ भजत बात बडूर बनी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडूर कि ये भगे तो जब ईर टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू किया ले सुबह सुनने के सुबह घोरो भंसाई रात भाई को बढ़ाओ सुबह तनो वो तनी बट दूर कहीं दूर सो नेक चावा पट्ठो को घोरी में सुबह दूर सुनने कही रानी

से चले गए, भी अपने भवन को चले गए। और रानी ने अति सुबह तीन अस्खों भी घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी तीन अस्खों हकाऊ थे रानी तो हका जो वैज्ञा से कचुवती से राजा गिलंद की बाग में जा रहा जा रहे सो अन्य भज्जा घर वाले नाय के टूपी माय की बोलनिया टूपी रानी राजन की बेटी थी उसे कछु मोरन को कछु टूटो तो नहीं हकी भी तो फूलन की तुरा तो लगती सुबह मालन रोजी ना डाली लगा दे और फूलन को ले जाओ राजन महती सोची के मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमने आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बाहर राजन की लड़की गए तो राजन ने सोची कि जो तो काछी माछी की तो जाहे नहीं है तो कोई राजा की लड़की तो जैसे कैसे अपने घरे पहुंची घरे पहुंची सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालन से उनने माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ अब बादशाह ने हटी सो राजन की पिया नहीं होती बाबे नहीं होता कम कम अबे नहीं होता पिया रखो राजन ने सोची अब उनकी रानी हटी बादशाह तो अपने उन्हें थारी लगाई तो उन्हें पैसे भेजना की बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह करती हवा सोने हर सांस लगी सो बीजन ने सोची के कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सुनाओ से पूछी जाओ बोले क्यों खवास रात का बोले कल कहिए राजा कल कारण का है ये को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल्ले ये रानी को वन में छोड़िया और भगिया तो उनने अति से घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे बोले कल्ले चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह ये गए दोनों जन नाव नहीं गए वे दो ही गए सो बोले कल्ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धरी तो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद के बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही तो ठीक है तो उतर जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में गए सो उनने भैया मालन ने उन्हें घर आए बोले कल क्यों रे कहाँ के हो परदेसी कैसे फिर रहे तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन सोचे तुम्हें जान से मार हाँ सुबह आराम से मालिन को साधा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है वो रंग महल में पहुंच गई राजा गिलंद की अरो कमाओ ने बादशाह तो बदमाश होते ही तो कुछ जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें उपद्रवी सारी कही तो मालिन ने राजन बोली कल दो घोड़े वाले आए और भी जाकर और बहुत परेशान कर रहे उनमें सब नाश कर दिया बगीचा को तो उनमें छिड़ गया चलिए तुमको राजा बुला रहे बोली कल हाउ साहब जब तो भी ऊंची हती भीलपुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए अपने अपने घोड़ी लेके बोले उनकी गैल में सलाह हो गई

श्रोताओं को भैया अपने काशी राम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जने के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा हैं, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत हैं एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और होवे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।

0: तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन का गाँव के सुन बताओ है। और अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करत हैं राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कहाँ के रहे हो दादा?
2: केना के पूरा पटोक ग्राम केना जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा कहाँ करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर रहे अपने दो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: वर्कर हम कहा बस किए काम वाम हम कहा तुमने कर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के भी चाहते जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ नींद नहीं पाओ घूरी फिरात हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वह समस्या है अपनी?
2: अब वह समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें ले रहा है हम खा रहे हैं
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी आओ।
2: आओ बैठ भी आओ जी ना आओ तू सच है।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने हैं।
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जनाब जी बैठे अब वैसे ही भी है तब लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लगे तो
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका तो बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो चाहिए है। अरे कछु ना कछु ना तो 10 रुपये उसको तो खर्च है ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 रुपये उठा के चल जाती है।
1: दिन भर आपको कैसे कटा था?
2: मेरा दो बच्चे उनका दिमाग लड़ा ले सुजारे सुजारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी?
2: हाँ
1: जैसे का आप अब बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखे कि नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी ही दिखा कागजा नहीं बांस पाऊ मेरे दिखा सब।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का
2: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा रहे।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली पापा जी जाना फैली के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरी की जठानी बिना मिले दिवानी बिना मिले ये ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
2: जब जो हो चाहिए कि शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधा है कबू आपत्ति नहीं आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में ओवर काम नहीं करा प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
2: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं करना।
1: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आप का कहना चाहो सब जनन से आपको का के वो है?
2: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो,
2: मतलब
1: शुरू से आप
2: यात्रा ना कथी
1: हाँ यही बात आप यही बात पूछना चाहो।

0: शुरू से बता दो आप कि आप का क्या वो चाहते
1: जो अपने बाप मचाई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं के ऊपर है बाप मचाई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं है तो जाकर आ रहे जो मतलब है जब कहो चले जाओ ये पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं है तो कहाँ जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
0: और
1: का वो आराम चाहूद बस मिल जावे पेंसिल बन जावे तो पैसा खर्च हो जाए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को संभाले खाने दीवे तीन चार सौ को महीना मिल गए तो अपने उम्र खर्च चलाते
0: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम करें और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में का कहो गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं तो भैया अपन सुनो और सवई पंच भैया सुने।

भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जीखो गाड़े है उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं योगी बुंदेलखंड जिला झांसी थाना रक्षा ग्राम खंडना से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी प्रीतम भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है सर। ये कह रहा है की ऐप पर प्रसारण नहीं आ रहा है, डायरेक्ट में आ रहा है।
0: सुनो अब आएगा, सही हो गया वो।
1: अच्छा
0: बताओ,
1: बीच सावन का महीना चल रहा है तो वो वादा सुनेंगे तो साजन झूला झूले वादा कैसे होंगे?
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बिन साजन झूला झूलू।
0: बिन साजन झूला झूलू
1: जी।
0: अच्छा और सब बढ़िया
1: है सर, बारिश वारिश नहीं हो रही
0: है। चलो बढ़िया, सुनो अपने पसंद को जो गीत भाई साहब।
1: जी सर धन्यवाद।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम प्रयाग तहसील सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं अनूप जी?
1: बढ़िया है बढ़िया।
0: बताओ कौन सा गीत सुनो आज?
1: फुलर काटी का
0: कोई सो भी सुना दें।
1: हाँ कोई भी सुना दो एक।
0: चलो भाई जी, आपको सुनवा रहा फूलों कांटे फिल्म का जो गीत
1: जी। राजू भाई साहब के संग पूरा तोड़वा जाओ संग है।
0: हाँ तोड़वा रहा है, आ रहा है एक आध नाम।
1: हाओ बलवान चाचा है शामिल और आप भी हो, राजू भाई साहब हैं और जितने लाइव सुन रहे हैं सभी दोस्तों के लिए।
0: ठीक है ठीक है सर।

इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के फरमाइशी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी बुधवार को मुलाकात, ठीक इसी समय 12 से 1 बजे के बीच में। तो फ़ोन करना ना भूलिएगा, हमारे नंबर 9219207749 पर।

0: में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है। तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथ ही कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही है। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
1: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
0: तो साथियों अब हमारा समय होता है ऐसे कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
0: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, फोन नंबर है हमारा
2: 9219207749।
1: साथियों आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। आप दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: गए काहे किसान।
1: आजीविका जाने सुने

बहुत दिन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी, अरे बहुत दिन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

पर देर में बिद गई आज अदर में लटकी। अरे पद बेड में बिज गई आज अधर में लटकी ठाणी। ए ठाणे अप थाने अपनी।

एपिसोड 10 दृश्य स्वच्छता स्वच्छ आंखें स्वच्छ जीवन। इस एपिसोड का उद्देश्य गांव में सफाई के महत्व को समझना है, जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश हैं: गांव में साफ सफाई, पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त गांव, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति BWSC की भूमिका, सामुदायिक निगरानी और देखरेख, कचरा और प्लास्टिक का सही प्रबंधन, सरकारी समर्थन और सामुदायिक भागीदारी, पहले और बाद में पूछे गए सवाल। सवाल नंबर 1, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 3, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं?

0: नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और मेरे साथ है जोश से भरपूर मेरे सहहोस्ट आरजे
1: माता दीन।
0: दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है। हम सिर्फ उस सफाई की बात नहीं कर रहे जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि उस हवा की भी जिसे हम रोज सांस लेते हैं और उस माहौल की जो हमारी जिंदगी का सीधा प्रभावित करता है। और हाँ, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ।
1: बढ़िया, चलो सुनाओ।
0: मेरे दोस्त की मेघालय यात्रा कमाल की रही। वो एक छोटे गांव की इतनी तारीफ कर रहा था कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, मैं तो बस देखती ही रह गई। फिर मैंने खुद इंटरनेट पर खोजबीन की और सच में वो बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा था।
1: तुम तो सस्पेंस बढ़ा रही हो, अब ज्यादा घुमा फिरा कर मत बोलो। जल्दी बताओ कि आखिर ये कौन सा गांव है और यहाँ क्या खास है।
0: अच्छा सुनो, इस गांव का नाम मावलिन नोंग्स है। ये मेघालय में है और इसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ सफाई कोई मजबूरी नहीं बल्कि लोगों की आदत में शामिल है। ये गांव पूरी तरह प्लास्टिक फ्री है, मतलब यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर कहीं से प्लास्टिक आ भी जाए तो उसे फेंका नहीं जाता। लोग प्लास्टिक की पुरानी बोतल या टायर से गमला बनाकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। गांव की गलियों में आपको

0: शेयर करते हैं। गांव के घर और बाकी इमारतें भी खास हैं, ज्यादातर बांस और पत्थर से बने हैं। इससे गांव खूबसूरत लगते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ सभी घरों में शौचालय है, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। मावलिन नोंग्स ने साबित कर दिया है कि जब लोग साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं तो दूर दराज के गांव भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाता है।
1: लगता है तुम इस गांव की बात करना छोड़ नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। गांव की दिलचस्प बातें सुनकर मुझे भी वहां जाने का मन कर रहा है। जो कुछ भी तुमने बताया वो असल में उसी साफ सफाई की बात है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और यही तो आज के लिए एपिसोड का मुद्दा भी है।
0: दोस्तों, दिखने वाली सफाई का मतलब केवल अपने घरों को साफ रखना नहीं है, बल्कि पूरे गांव को साफ रखना है। जैसे बाजार, बस स्टॉप, गलियां, स्कूल, हेल्थ सेंटर, तालाब, कुआं, ये सब कूड़े कचरे और गंदे पानी से दूर रहें और अच्छी हालत में रखे जाएं।
1: बिल्कुल, गंदगी भरा माहौल सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, बल्कि ये मक्खियों और मच्छरों को बुलाकर बीमारियां फैलाता है। गंदगी हमारे पानी को गंदा करता है, वह हवा को खराब करता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और खाने की सफाई को भी प्रभावित करता है।
0: सोचिए, क्या आपको ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर अच्छा लगेगा जिसके चारों ओर प्लास्टिक और कचरा फैला हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो जगह साफ सुथरी और हरी भरी हो तो वहां बैठना सुकून भरा लगेगा। साफ माहौल सिर्फ अच्छा दिखता ही नहीं, बल्कि ये हमारे सेहत, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बेहतर होता है।
1: सोचिए, अगर गांव के मंदिर, मस्जिद, चर्च या पंचायत घर के आसपास कचरे का ढेर लगा हो तो क्या वहां जाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के तहत सरकार गांव को ODI प्लस लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका मतलब है सिर्फ खुले में शौच रोकना नहीं, बल्कि कचरे का सही प्रबंधन, गंदे पानी को साफ करना और पूरे गांव को स्वच्छ बनाए रखना भी है।
0: और हाँ, ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए गांव को सभी घरों में शौचालय का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कम से कम 80% घरों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना सिर्फ उनके आसपास का इलाका बल्कि सभी सार्वजनिक जगह जैसे स्कूल, सामुदायिक केंद्र और तालाबों के आसपास कूड़ा या गंदा पानी जमा ना हो। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ODF प्लस IEC मैनुअल के अनुसार
1: हर गांव की सफाई और प्रगति को जानने के लिए एक रेटिंग सिस्टम है जो बताता है कि गांव में कितना सुधार हुआ है। ये स्टार टियर प्रणाली के जरिए होता है। सबसे पहले आकांक्षी गांव की बात करते हैं। ये ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव है जो कचरे या गंदे पानी के प्रबंधन की शुरुआत कर चुके हैं। फिर आते हैं उभरते गांव जहां ठोस और तरल दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है, और आखिर में आदर्श गांव वे हैं जो ODF प्लस के सभी नियमों को पूरा करते हैं। यहां नियमित सफाई होती है और गांव वाले सफाई और जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहते हैं।
0: वैसे ODF प्लस मॉडल गांव बनाना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे छोटे उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम सभी घरों में शौचालय का इस्तेमाल करना है ताकि कोई भी खुले में शौच ना करे, मतलब साफ सफाई ऐसी हो जो आंखों से दिखे, यानी घरों, स्कूलों या सड़कों पर कूड़ा या गंदा पानी नजर ना आए। गांव में सभी घरों से कचरा इकट्ठा होना चाहिए। जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है। नहीं गलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। गंदे पानी को साफ करना जरूरी है, इसके लिए नाली

0: करनी होगी, पानी सोखने वाले गड्ढे बनाने होंगे और साफ किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल करना होगा। साथ ही लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक भी करना होगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि सफाई सिर्फ सरकार का काम नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। जब गांव वाले मिलकर काम करते हैं तो उनका गांव ODF प्लस मॉडल बनकर पूरे देश के लिए अच्छा उदाहरण बनता है।
1: गांव में सफाई और पानी से जुड़ी अच्छी आदतें लगातार बनी रहें, इसलिए मजबूत ग्राम जल और स्वच्छता समिति या VWSC का होना बहुत जरूरी है।
0: गांव में VWSC यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति बहुत जरूरी है। ये कोई बाहर की नहीं, आपके गांव की समिति है। इसमें आपके गांव के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि सफाई और बदलाव लाने की जिम्मेदारी और ताकत आपके गांव में है। VWSC समिति का काम गांव को साफ सुथरा बनाए रखना है। इसमें हर घर की भूमिका होती है। जब इस समिति के साथ मिलकर सभी लोग काम करते हैं तो एक साफ और सेहतमंद गांव बनना आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि VWSC में कौन कौन लोग होते हैं। इस समिति के 5 सदस्य महिला प्रतिनिधि, आशा बहन और यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी होते हैं।
0: हाँ, और आप जानते हैं कि आपके गांव को साफ और सेहतमंद बनाए रखने में VWSC का अहम रोल होता है। मैं आपको इस समिति के काम के बारे में बताती हूँ। ये समिति गांव के लोगों को सफाई से जोड़ने की योजना बनाकर इसे हकीकत में बदलती है। साथ ही समिति ये ध्यान रखती है कि गांव में सफाई से जुड़े काम जिले की बड़ी योजना से मेल खाएं और गांव को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करें। VWSC सफाई के लिए मिलने वाले फंड को सही तरीके से खर्च करती है। पैसे का उपयोग खाद बनाने के गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे और कचरा निपटाने के आसान तरीके तैयार करने में किया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। VWSC सिर्फ सफाई से जुड़ा ढांचा बनाने का काम नहीं करती, बल्कि पूरे गांव को जागरूक भी करती है। ये समिति खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को सफाई और कचरा प्रबंधन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में सबको बुलाया जाता है ताकि हर कोई ये समझ सके कि साफ सफाई सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
0: तो दोस्तों, अपने VWSC का समर्थन कीजिए। ये सच में लोगों के लिए बनी समिति है।
1: क्या तुम जानते हो कि सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव गांव में सफाई बनाए रखने के लिए जरूरी है?
0: रुको रुको, सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव से तुम्हारा क्या मतलब है?
1: मैं समझाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक निगरानी का मतलब है कि गांव के लोग खुद सफाई की जिम्मेदारी लें। गांव के लोग निगरानी समितियां बनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि शौचालयों का सही इस्तेमाल हो, कचरा ठीक से फेंका जाए और सार्वजनिक स्थान साफ रहें।
0: अब संचालन और रखरखाव के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है कि सफाई से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे शौचालय, पानी सोखने वाले गड्ढे, खाद के गड्ढे और बायोगैस इकाइयां ठीक से चलती रहें और समय समय पर उसकी मरम्मत हो। VWSC इस काम में खास भूमिका निभाती है। ये समिति मरम्मत का इंतजाम, गड्ढे खाली करने की व्यवस्था और साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाने का काम करती है ताकि गांव हमेशा स्वच्छ बना रहे।
1: अब समझ में आया कि गांव के लोग खुद सफाई पर नजर रखते हैं, साथ ही VWSC की मदद से सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहती हैं।
0: बिल्कुल सही। जब लोग सफाई की योजना बनाने और उसे लागू करने में शामिल होते हैं तो वे इसे चलाए रखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कई गांवों में लोग बारी बारी से सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करते हैं और जल निकासी दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे पता चलता है कि जब लोग मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं तो गांव में बड़ा बदलाव आता है।
1: हाँ, लोगों को सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमा हुआ पानी को हटाना जरूरी है ताकि मच्छर ना पनपें। खास तौर पर घर के बाहर और पुराने टायरों में पानी जमा ना हो, क्योंकि वहां मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। नहाने या कपड़े धोने से निकला पानी भी खुली नालियों में जाने की जगह सूखने वाले गड्ढों में जाना चाहिए ताकि गंदगी और बीमारियां ना फैलें।
0: गांव में सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखने के लिए स्कूल, अस्पताल, बाजार, चाय की दुकान और मंदिर में रंग कोडेड कचरा पेटियां रखनी चाहिए। हरे रंग की डस्टबिन में गल्ले वाला कचरा जैसे सब्जियों का छिलका डाला जाए। नीली डस्टबिन में सूखा और ना गलने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक और कागज रखा जाए। इससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना आसान होगा।
1: लोग खुद आगे आकर स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम चला सकते हैं। लोग दीवारों पर अपना इलाका साफ रखें जैसे संदेश लिख सकते हैं। लोग कबाड़ इकट्ठा करने वाले या कूड़ा साफ करने वाले से मिलकर ये तय कर सकते हैं कि अलग अलग किया गया कचरा, खासकर प्लास्टिक, सही तरीके से हटाया जाए और खुले में जमा ना हो।
0: दोस्तों, याद है हमने एपिसोड 6 में ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में क्या सीखा था? जल्दी से याद कीजिए, रसोई का कचरा और गाय का गोबर बेकार नहीं होता, इन्हें खाद में बदला जा सकता है जो खेतों और पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल, अगर आपके घर या खेत के पास थोड़ी सी खाली जगह है तो आप वहाँ एक छोटा गड्ढा बना सकते हैं और उसमें रोजाना का गीला कचरा डाल सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना, खराब फल या गोबर। इसे कभी कभी हिलाएं और मिट्टी से ढककर रखें। धीरे धीरे ये बेहतरीन खाद बन जाएगी जो खेतों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इससे कूड़ा भी कम होगा और गाँव की सफाई बनी रहेगी।
0: बस ध्यान रखिए कि खाद का गड्ढा घरों और पानी के स्रोतों से दूर होना चाहिए। गाय का गोबर खाद या बायोगैस बनाने में काम आ सकता है, जिससे खेती बेहतर होती है, सेहत सुधरती है और हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। तो चलिए स्वच्छता और पर्यावरण के लिए मिलकर काम करें।
1: हाँ बिल्कुल, जब लोग खुद सफाई की पहल करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक दिखता है।
0: सफाई सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो हमारा इलाका साफ और सुंदर बना रहेगा।
1: आपका गांव मिलकर ये कर सकता है। स्कूली बच्चों, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए इकट्ठा करें। हर महीने एक दिन सफाई अभियान चलाएं। चाय की दुकानों, मंदिरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान रखें। लोगों को रसोई और गोबर के कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाएं। इससे कचरा कम होगा और खेतों की पैदावार बेहतर होगी। आंगनवाड़ी या स्कूल के पास एक छोटा सा सामुदायिक बाग बनवाएं।
0: श्रोताओं, सफाई सिर्फ सरकार या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम घर पर कैसे सफाई रखते हैं, कचरे का सही निपटान कैसे करते हैं और अपने बच्चों को स्वच्छता की आदत कैसे सिखाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कदमों से हमारा गांव साफ और सुंदर बनता है। चलिए मिलकर पहल करें और अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।
1: दूसरों का इंतजार किए बिना खुद सफाई की पहल करें। अपनी रोजमर्रा की आदतों में सफाई को शामिल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी सेहत का रखते हैं।
0: याद रखिए कि स्वस्थ गांव ही खुशहाल गांव होता है और स्वच्छ गांव ही सबसे मजबूत गांव होता है।
1: आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने गांव को साफ रखें।
0: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी से जाने का होता है। समय श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे नंबर पे फोन करके, हमारा नंबर है 92 19 20 77 49। अब हमारे सवालों की बारी है जो आपसे पूछने हैं, जो कि हमने पहले भी पूछे हुए थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो पहला सवाल है, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर की भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा है, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद

0: साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसे जगहें भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं? मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, और इन तीनों सवालों के जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से 92 19 20 77 49। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और अपने रेडियो साथी माता दिन भैया को दो
0: जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

panico da को, पानी को रखो संभाल जो चाहो जिंदगानी में। कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।

0: देखें आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी। हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक।
0: और

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून, ये उपहार बांटो सदा

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार में साथियों हम बहुत बहुत स्वागत करा देंगे। और साथियों आज के हमारे जो कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार में नरेगा जैसी महत्वाकांक्षा जो योजना चलाई जा रही है उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जहाँ

0: आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। काय से हम जो देखा देंगे के शासन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं जो बनाई जाती हैंगी, अगर जमीनी स्तर पर बाखों देखो जाए तो जमीनी स्तर पर हमारे श्रोता साथियों को लाभ नहीं मिल पाता है। वो काय से हम जो देख रहे हैं कि सरकार ने घोषणा करी कि कम से कम हमारे मजदूर भाई बहनों को कम से कम 100 दिन की रोजगार देवा बहुत जरूरी है। यदि वो काम के लाने मांग करते हैंगे तो उनको 100 दिन की मजदूरी देवो बहुत जरूरी है। लेकिन साथियों हम जो देख रहे हैं कि मनरेगा को काम चल भी रहा है, वो मास्टर रोड भर भी रहेंगे, लेकिन साथियों हमारे मजदूर भैया बहन को अभी भी वे मजबूर हैं यहाँ से वहाँ पलायन करवे के लाने, यानी एक शहर से दूसरे शहर छोड़वे के लाने मजबूर रहेंगे। कैसे उनको मजदूरी ही नहीं मिल रही हैगी। तो साथियों आज के हमारे कार्यक्रम में हमें लगी हैगी कि हम अपने श्रोता साथियों पर जय विषय पर मुद्दा उठाएंगे, तो जा विषय पर हमारे एक्सपर्ट जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके प्रदीप आदित्य जैन और सेक्रेटरी जो हमारी भारत सरकार की रही हैंगी, उनको का क्या वो हैगा कि वो मनरेगा को लेकर का विचार कर रहे हैंगे और उनकी का सोच है जो महत्वाकांक्षी मनरेगा है, महत्वाकांक्षी योजना है शासन द्वारा की इसको कौन तरीके से हमारे साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए आपको हम प्रदीप आदित्य जैन के पास ले चलाते हैं, उनके का विचार हैं जो जॉब कार्ड को लेकर, का ऐसे हम जो देख रहे हैं कि जॉब कार्ड बने हैंगे लेकिन सरपंचन के पास भी जॉब कार्ड हैंगे, तो जाके लाने का प्रयास करो जा रहा है। तो आइए काय से पूर्व केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय में रह चुके हैंगे तो उनके विचार को लेते हैंगे। तो साथियों आइए आपको प्रदीप आदित्य जैन साहब के पास ले चलाते हैंगे, उनसे जानते हैं उनके का विचार रहेंगे।
1: सबसे पहले तो एक एक आम आदमी को जागरूक होना चाहिए और हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जागरूकता नहीं है, शिक्षा नहीं है और शिक्षा ना होने के कारण व्यक्ति अपने अधिकार को भी नहीं जानता। वो नहीं जानता कि कब उसे झूठा फंसाया जा रहा पुलिस द्वारा, कब उसके लिए जो योजनाएं आ रही वो कहीं और चली जा रही, वो स्वयं जागरूक नहीं है। और दूसरा जो राज्य सरकार है वो अपने प्रबंधन को, अपने डिलीवरी सिस्टम को उतने मजबूती से लागू नहीं कर पा रही, जिसके कारण इसमें बीच में खामियां आ रही। लेकिन एक चुनौती है, लेकिन सतत इसमें सुधार हो रहा है और हम समझते हैं कि पहले से बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन आया है। और जब तक व्यक्ति जिसके हक के और अधिकार के लिए इस कानून का निर्माण हुआ है वो शिक्षित और जागरूक नहीं होगा, हम समझते हैं कि पूरी तरह से योजना में लाभ नहीं मिल सकता। भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं में, हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार है। लेकिन अंधेरे को हटाने के लिए हमें प्रकाश का एक दीपक जलाना पड़ेगा, अंधेरे को अंधेरे से नहीं हटा सकते। और हम समझते हैं कि ग्रामीण विकास की जो नरेगा योजना है वो उस प्रकाश का कार्य कर रही है और जिस तरह से जवाबदेही, पारदर्शिता और अंतिम व्यक्ति तक उसके अधिकार को कैसे पहुंचाया जाए और सोशल ऑडिट कैसे हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको लाभ पहुंचना है जब वो जागरूक नहीं है, तो हम समझते हैं कि हमारी जो योजना है वो देश में तमाम विभागों में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर करने में काफी सहयोगी होगी। जहां एक और आने वाले समय में ये योजना पूरी तरह पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार रहित होगी। बुंदेलखंड है, उस बुंदेलखंड की हालत एक सी है। हम समझते हैं कि नारी शक्ति हमेशा से इस मुल्क की मुख्य धारा से जुड़ी रही। हम अनादिकाल का इतिहास उठाकर देखें, आज भी हम भगवान राम के पहले सीता का नाम लगाते हैं, श्याम के पहले राधा का नाम लगाते हैं, झांसी की रानी ने महिला रेजिमेंट का निर्माण कराया था। और धीरे धीरे जहां पर लिटरेसी खत्म हो गई, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ इलिटरेसी है, और जहां पर शिक्षित हो गए लोग वहां महिलाएं स्वयं, उन्हें पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन हम समझते हैं कि बुंदेलखंड के हमारे जो सभी जनप्रतिनिधि भाई हैं, सरपंच भाई हैं, उन्हें बुंदेलखंड की परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए। यह बुंदेलखंड की वो माटी है जिस माटी के अंदर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने राज किया और उन्होंने पहली बार महिला रेजिमेंट, जिसमें महिलाओं ने न केवल युद्ध लड़ा बल्कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, तो उनको चाहिए कि अपनी पत्नियों को वो जिस हक के लिए भारत सरकार आरक्षित कर रही है उस हक के लिए मुख्य धारा में जोड़े और उन्हें पूरा स्वावलंबी बनने दें। बुंदेलखंड रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। और साथियों, अब है आपने जो कितना नौनी सी बातचीत को सुनो बतकाओ, हमारे प्रदीप आदित्य जैन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैंगे भारत सरकार में, उन्होंने कितनी नौनी सी जानकारी भी दी हैगी और साथ में उन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी दिया है हमारे साथियों के लाने के सबसे पहले हम और उनको जागरूक हुए चाहिए, तब हम जाके और लोगों को जागरूक कर पाएंगे। कैसे हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारे योजना के बारे में हमें तो पता है को, लेकिन हम चाहते हैं कि योजना के बारे में हम दूसरे से नहीं पूछेंगे, आपको पूर्ण रूप से योजना के बारे में जानकारी रत नहीं है और चले जाते अपन सरपंच के पास या अधिकारी के पास। तो पहले सबसे पहले जो योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, वो योजना आखिरकार क्या है, बाकी किताबें पढ़ो, लोगों से जानकारी लो, फिर इसके बाद अपनी बातचीत को रखो कि भैया जो जो संशोधन भय हैंगे और जो जो योजना हैगी वह योजना के तहत साथियों अपन हो अपनो हक मांगने हैं को कि हमें भैया 100 दिन की मजदूरी जरूरी है को देवो, तो आपको प्रयास करने हैं। अब शासन द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अब पंचायतन के सोशल ऑडिट हुए भी जा रहे हैं, तो साथियों कार्यक्रम को आगे अपन बढ़ा देंगे। और रीता जी हैं जो केंद्र सरकार की सचिव हैं ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग की, उनकी बातचीत को हम सुना थे कि उनको का क्या वो है वो, लेकिन साथियों उनकी बतकाओ सुनबे से पहले कायना अपन 900 लोकगीत सुन ले थेंगे और जो लोकगीत को सुनने के बाद साथियों आपको रीता जी के पास ले चलाएं और उनकी बातचीत को सुनाएंगे।

0: गांधी नरेगा में रोजगार के लाने आवेदन की हो।
1: पंचायत
0: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
1: पंचायत
0: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
1: ग्राम सभा।
0: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
0: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
3: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी
4: अपना रेडियो अपनी बात है। आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के संग में और साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। अभी आपने रामाधीन आर और उनके साथियों की आवाज में जो नौ सौ लोकगीत को सुनो। आओ अपन अब आगे शुरुआत कराते हैं और रीता जी को सुनाते हैं।
5: रीता शर्मा सचिव भारत सरकार ग्रामीण विकास राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है उसका और जो हमारी

0: साथ में किस प्रकार से समन्वय हो सकता है, किस प्रकार से कन्वर्जेंस हो सकता है, जिससे जो परिसंपत्तियां नरेगा के अंतर्गत सृजित की जा रही हैं, चेक डैम है, पॉन्ड है, फार्म पॉन्ड है, ये कुएं हैं, उनसे जो हमारे काश्तकार हैं उनकी उत्पादकता और कैसे अधिक बढ़ाई जा सके, कि किस तरीके से उत्पादकता को हम और बढ़ाएं और किसान की और जो छोटे और मध्यम किसान हैं, विशेषकर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, कि उनकी आमदनी और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है।
1: और ग्रामीण विकास के लिए, जैसे आपने कहा ग्रामीण विकास के लिए, तो उनके कैसे लाभ मिलेगा नरेगा?
0: नरेगा का इस प्रकार लाभ मिलेगा कि नरेगा के अंतर्गत जो कानून है उसके तहत 100 दिन का काम दिया जा सकता है। जब वो डिमांड ड्रिवन है तो जब मजदूर उसको डिमांड करेंगे तो 100 दिन का काम उनको दिया जा सकता है। जिन परिवारों ने 100 दिन का काम कर लिया है, उनमें से ऐसे परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके जो यंग मेन एंड वुमेन हैं, उनको युवा और युवतियां हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कौशल वाली ट्रेनिंग दे के उनको इस प्रकार के जॉब्स में लगाया जाए जो कि गैर कृषि है, यानी कि जो जमीन से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये हमें मालूम है कि जमीन पे बहुत प्रेशर है, तो उन लोगों को सर्विसेज सेक्टर में, उनको एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में, उनको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रेनिंग दे के उनको लगाया जाए। बहुत से स्टेप्स और बहुत से कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो हमारी नरेगा की वेबसाइट है उस पे सारी सूचना हम सार्वजनिक स्थान पर डाल देते हैं, यानी कि कोई भी जाकर ये देख सकता है कि कितने जॉब कार्ड और कितने मस्टर रोल्स, कहाँ पर क्या काम हुआ, किसको कितना पैसा मिला, और वो कागज ले जाके वाकई में गांव में पूछ सकते हैं। दूसरा एक सोशल ऑडिट, यानी कि सामाजिक लेखा परीक्षा की एक पद्धति बनाई गई है, जिसमें कि जो जो काम उस गांव में हुआ है वो हर 6 महीने में पूरी खुली ग्राम सभा के सामने आपको पढ़ के सुनाना होगा। जहाँ जहाँ ये बोगस लोगों के माध्यम से, बोगस लोगों का नाम भर के पैसा निकाल लिया जाता है, तो उसमें एक निर्णय ये लिया कि कोई भी पेमेंट अब कैश के माध्यम से नहीं होगा, सब पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से होंगे। भले उसमें थोड़ी देर लगे, लेकिन बैंक और पोस्ट ऑफिस में एक डबल चेकिंग हो जाती है और बोगस लोग उसमें काफी हद तक छंट जाते हैं, और हमें जो सूचना मिली है वो छंट भी गए हैं। और दूसरी चीज इसमें यह है कि हर 6 महीने में अगर सोशल ऑडिट होगा, जिसमें कि लोग, जिसको हम कहते हैं सामाजिक लेखा परीक्षा, वो होगी और सूचना बताई जाएगी पढ़ के, तो वो उस हद तक कम होगा। अब हम
2: महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लाने आवेदन की खो
3: पंचायत,
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की
3: पंचायत,
2: गांव में कितने कितने और का काम हुजे जो तय को करे
3: ग्राम सभा,
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की
4: ग्राम सभा की,
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
5: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार में। और साथियों, अब आपने हमारे जो भारत सरकार के सचिव थे रीता जी, और संगे संगे जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे प्रदीप आदित्य जैन, उनकी बातचीत को सुनो। और साथियों, आपको समझ में आ गई हुई है कि सरकार द्वारा कितना ज़्यादा प्रयास करो जा रहा हो नरेगा को लेकर, और जाको भी प्रयास करो जा रहा है कि जो हमारे साथी नव युवा साथी जो पढ़े लिखे हैंगे और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स देकर, कौशल विकास की ट्रेनिंग्स देकर उनको जॉब, जिसे कहा जाता है रोजगार, उपलब्ध कराया जा रहा है, जो प्रयास भी चल रहा है वो। और संगे संगे साथियों ने रीता जी ने कितनी नौनी बतकाओ को बताओ है वो कि हमारे अब ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट हुई है। सोशल ऑडिट को साथियों मतलब है वो कि सोशल ऑडिट में सारी पैसा जो आपके पंचायत में आओ है वो कितने कौन कौन मद में कौन कौन पैसा आओ और कितने कितने आपने खर्च करो, पूरा लेखा जोखा पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से पढ़ के सुनाओ, जो प्रयास भी चल रहा है वो। और नरेगा जैसी महत्वाकांक्षा योजना जो शासन द्वारा चलाई जा रही है, उन पर कौन तरीके से हमारे साथी लाभ ले सकते हैं, अब उनने जो प्रयास कर दो है कि सीधे सीधे बैंक

0: खाते में आपके पैसा पहुंचेंगे। लेकिन साथी यदि आपको लगत है गो कि जिनमें अनियमितताएं पाई जा रही हैं तो संबंधित अधिकारी के पास आप शिकायत कर सकत है। जिला कलेक्टर जो होते हैंगे उनके पास जाकर आप शिकायत कर सकत हैंगे। CM हेल्पलाइन हैगी उन पर भी जाके आप शिकायत कर सकत हैंगे। और प्रयास करो कि जो आपके ग्राम पंचायत में पैसा आओ है वो कौन कौन मद के लाने आओ है और कैसो पैसा उसको खर्च करने तो जाके लाने आपको प्रयास ग्राम सभा में करने हैगी कि ग्राम सभा में मुद्दा उठाना के साथ ऐसे ग्राम पंचायत में अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से मद में कितनों पैसों आए है गो और कितनों आवे तक खर्च भाए गो। तो जब तक साथियों हम जागरूक नहीं हुई है, जब तक हम प्रयास नहीं करें, तब तक हम अपने ग्राम विकास को अपने एक सुंदर जिसे कहा जाता है अच्छा आदर्श ग्राम तब तक नहीं बना पाए जब तक हम प्रयास नहीं करें। जय के संगे साथियों अब हमारा समय होता है जा कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार से जावे को। साथियों हम प्रयास करें कि छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचे, छोटी छोटी योजना आप तक पहुंचे, जाको आप लाभ लेकर प्रयास करो कि आपकी ग्राम पंचायत आपकी आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में कही जाए। तो हम कोशिश करें अगले कार्यक्रम में कि आपको नई जानकारी उपलब्ध कराएं और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप खुद स्वयं जाकर आप प्राप्त कर सकते हैंगे। और आजकल तो इंटरनेट पे आप गूगल पे जाकर सर्च करो कि यह स्कीम से हमें किस तरीके से लाभ लेना है, सारी स्कीम सारी योजनाएं आपके वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाए। तो आप प्रयास करो सारी जानकारी आप प्राप्त करके अपना हक की लड़ाई आप लड़ो। तो अगले कार्यक्रम में फिर हुई आपकी हमारी मुलाकात। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगो हमें जरूर बताओ। जो पते पर आप चिट्ठी के माध्यम से भी आप बता सकत तो पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फोन नंबर
1: 92-19-20-77-49। और साथियों जो कार्यक्रम पुरानो कार्यक्रम है और अब मनरेगा को नाम भी चेंज हो गया है वो, लेकिन मनरेगा तो मनरेगा ही हैगी। मनरेगा के नाम पे किस तरीके से मजदूरी लई जाते हैं आते हैं मस्तरोल भरे जाते हैं भाई सब चीज़ें हैं और कुछ संशोधन भाव है वो अगले कार्यक्रम में आपको जब भी बताए। तब तक के लिए नमस्कार।